0: एसएस आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईंक सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।
1: रेडियो आदि खोला 105.4

0: समीचो 14 के में बोदे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खातरी खै हमरो खै खै बहु
1: कोई लोटर पड़ दिलवा
2: आंगी समीचो लोटी पड़ी हूं छापताई गुदी
1: बर्दी आ बर्दी बा लोटर खले पड़ दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बनी खै बिसा खै मै विश्वास आनन फोने खले पनि आफै विवरण खै मै आपिन खबै बनी वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खै मै आरी सुमी बैंक आफै बनी आरी
3: सतर्क तनाथ छजिर देख्या पर्दैना
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
5: साधारण सभा एवं अधिवेशनमा उपस्थित हुने बारे वालिम उद्योग वाणिज्य संघको सूचना यही जेठ 10 गते बसेको कार्य समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस वालिम उद्योग वाणिज्य संघको 19औं साधारण सभा तथा नवौं अधिवेशन कार्यक्रम निम्न मिति समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिताको लागि सादर अनुरोध गर्दछौ। मिति असार 12 गते शुक्रबार, समय दिउँसो 12:30 बजेदेखि। स्थान वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभा हल सिटी हल। अनुरोधक वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ वालिङ साङ्जा।

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

पात्र मा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटाऊ कन्फ्युजन ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल धुली डट कम